0: काटा सीसा ओपन ब्रेस्ट गगन ते पई धन धन लोगन के राजा
1: सिंधाव गरीब निवाजा
0: खल पवन के सरजन हारे
1: दास जान मोहले हो बारे
0: कबियो बात बेनती चौपे
2: हमरी करो हाथ दै रक्षा
0: पूर्ण होए चित की इच्छा
2: तब चल नन मन रह हमारा
0: अपना जान करो प्रतिपारा
2: हमरे दुष्ट सुबह तुम काब हो
0: आप हाँ मोहे बचाव हो
2: सुखी वसै मोरो परिवारा
0: सेवक सिख सबै कर तारा
2: मोर अच्छा निज कर दया करिया
0: सब बैरन को आर सुंदरिया
2: पूर्ण होए हमारी आशा
0: तोर भजन की रह प्यासा
2: तुम्हें छोड़ कोई अवर न त्याओ
0: जो बर चाहो सतम ते पाओ
2: सेवक सिख हमारे तरिया है
0: चुन चुन सत्र हमारे मरिया है
2: आप हाथ दे मुझे अबरिया
0: मरण काल का त्रास नवरिया
2: पूजो सदा हमारे पच्छा
0: श्री अस्तु जो करियो हो रक्षा
2: राख रहो मोह राखन हारे
0: साहिब संत सहाय प्यारे
2: दीन बंद दुष्टन के हंता
0: तुम हो परि चतुर दस कंता
2: काल पाए ब्रह्मा अवतरा
0: काल पाए शिव जीव अवतरा
2: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा
0: सकल काल का किया तमाशा
2: जवन काल जोगी शिव कियो
0: वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो
2: जवन काल सब लोक सुवारा
0: नमस्कार है ताहे हमारा
2: जवन काल सब जगत बनायो
0: देव दैत जठन उपजायो
2: आद अंत एक है तारा
0: सोई गुरु समझियो हमारा
2: नमस्कार तिस ही को हमारी
0: सकल प्रजाजन आप सवारी
2: सेवकन को सब गुण सुख दियो
0: सतरण को पल मोह बध कियो
2: कट कट के अंतर की जानत
0: भले
1: की पीर पछानत
2: कीटी ते कंचर अस्थूला
0: सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
2: संतन दुख पाए ते दुखी
0: सुख पाए साधन के सुखी
2: एक एक की पीर पछान
0: कट कट के पट पट की जान
2: जब उद कर्क करा कर तारा
0: प्रजा तर्क तब दे अपारा
2: जब आकर्क कर्त हूँ
0: तुम मैं मिलत दे तब सब हूँ
2: जेते वरन श्रेष्ठ सब तारे
0: आप अपनी बूझे उचार है
2: तुम सब ही ते रहत निरालम
0: जानत वेद भेद अर आलम
2: निरंकार निरंकार निर्लंब
0: आद अनिल अनाद असंभ
2: जाका मूढ़ अचारत भेदा
0: जाको भेद न पावत वेदा
2: को कृपाहन अनुमानत
0: महा मूढ़ कछ भेद न जानत
2: महादेव को कहत सदा से
0: निरंकार का जीनत न पेव
2: आप अपनी बुद्ध है जेती
0: वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती
2: तुमरा रखना जाए पसारा
0: सजा प्रथम संसारा
2: एक रूप अनूप स्वरूपा
0: रंग पे और राग कही पूपा
2: मंडज जेरज से तुरकीनी
0: उत्पुज खान बहु राज दीनी
2: कहूं फूल राजा है बैठा
0: कहूं सिमक पे शंकर कैठा
2: सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पव
0: आद जुगाद स्वरूप संयम पव
2: रक्षा मेरी तुम करो
0: सिख कुवार सिख संग करो
2: दोष जिते उत्वत उत्पाता
0: सकल मलेच करो रण काता
2: जे असुजत सरनी परे
0: तिनके दुष्ट दुख खोए मरे
2: पुरख चवन पग परे तिहारे
0: तिनके तुम संकट सब टारे
2: जो कल को एक बार त्याय है
0: ताके काल निकट न है
2: अच्छा होए ता है सब काला
0: दुष्ट अरिष्ट रक्त काला
2: कृपा दृष्टि तन जाय निहर हो
0: ताके काप जनक मय हर हो
2: निज सिद्ध कर मो सब होई
0: दुष्ट छाछ वा सके न कोई।

0: जा प्रत परिया
1: चुन चुन सत्र हमारे मरिया
0: देख देख जग में दो चले
1: राख आप मोहे और नदले
0: तुम मम करो सदा प्रत पारा
1: तुम साहिब मैं दास तुम्हारा
0: जान आपना मुझे निवाज
1: आप करो हमरा सब काज
0: तुम हो सब राजन के राजा
1: आपे आप गरीब निवाजा
0: दास जान कर कृपा करो मोहे
1: हार परा मैं आनंद वार तो है
0: अपना जान करो रख प्रत पारा
1: तुम साहिब मैं
0: दास जान दे हाथ हबारो
1: हमरे सब पहले संगारो
0: प्रथम तरो भगवत को त्याना
1: भोर करो कविता बिदनाना
0: प्रसन्न था मत चरित्र अचारो।

0: सब सवारना
1: अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना
0: अगला सम्राट स्वामी सो के मन हो सारे
1: है नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
0: सचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा
1: करता तेरे सब कुछ है जिस दहे सो पावे
0: सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे
1: नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे
0: है नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा
1: सचा नाम मेरा आधारो
0: साथ नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुआइया
1: कर सांत सुख मनाए जिया जिन इच्छा सब पजाइया
0: सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जदिया है वडियाइया
1: कह नानक सुन हो संत हो शब्द तर हो पे आरो
0: साचा नाम मेरा आधारो
1: वाजे पंच सबत घर सभागे
0: घर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया
1: पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया
0: तुद कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे
1: कह नानक कह सक हुआ।

नारायण नारायण निंदेश काए बोली गवारी दुकृत सुकृत थारो करमरी नारायण निंदेश

साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता

संवद सत्रह सह पणिजय अर्ध सस पुण तीन कहिजय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा सुव

दलय तुम मम करहु सदा व्रत पारा तुम साहिब मैं दाह तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दाह जान

जगत बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

खमाज है, बहुत प्यारा राग है, ठुमरी गाण वास्ते बड़ा मुफीद राग है। पर प्यारी बच्ची बेटी शमीत कौर ने इसे छान बजाई तो बड़ा खूबसूरत वायलिन ये बजाते ने, पर छोटी उम्र च इतना अच्छा बजा रहे ने, अगों होर ये तरक्की करनगे, होर प्रोग्रेस करनगे, गुरु पंथ की होर सेवा करनगे।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

सिमरन सब के सुझाए, प्रभु गए सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु गए सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु गए सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम

प्रभ से निरंकार तिसकी सीख तराय संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक पुंजन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करतन मेरा किसे दूर जनाल तो किसे

ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाह नानक जो पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे मैला लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मानो प्रगा जैसे तुर प्रयागाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा ब्रह्म सप्ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी सहजन भय नानक जिन पर व्याप करे

राष्ट्रपति, कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट भान भ्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट गप गा विचारे, कई कोट नवतन नाम ध्यावे नानक करते कांत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंत ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभेगातम ने कोर, कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माया सर्व माहे, कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व उपाय।

हा राष्ट्रपति टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिसमन माहे तस्ते वृथा गोही नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप विनाशी प्रभे आपे आपन किया कशु न होए जिसो प्राणी रोचक होए तस्विन नाही दे रह किश काम गत नानक जब एक हर नाम रूबन तो नाही मोहे प्रभु की जोत सगल घट सुहाय तरमंता एकागो गर्भ जा सबके तिस्का दिया दरबै अध सूरज कहू कहावे प्रभु की कला बिना कहता है।

चरण कमल हृदय उर धारो करण कारण सो सब प्रभ समरथ दृढ़ कर गह हो नाम अरवथ ए तन संचो भगवंत संदना का निर्मल मंत ए गा सरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता में सो तन हर सेवा ते पाव जिस सुकुर्द बांछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा बज हर की सरणी अनुभा भी रोग ना जाए रोग मिटे हर अब खतलाए सर्व निदान मेर नाम निदान जब नानक दरगे प्रमान मन प्रबुद्ध वर के नाय दायित स्थावत आवठाए तागो बिगिन ना लागे गोए जागे हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख भाव पवन से पूर्ण आस भगत भाई आत्म बरगास तितकर जाए बसे बनासी कहो नानक काटी जम फांसी तद विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा

आप अष्टपति, जब अकारे कशना दृष्टिता पापुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समात बैर विरोध के संकमात, जब इसका वर्ण चेहन्ना जापत तब हर सौ कौ किसे व्यापत, जब अपने आप आपार ब्रह्म था मोहकांग सुबत ब्रह्म, अपन खेल आपुर तीजा नान करने हार ना दूजा, जब होबत प्रभ केवल तनी था बंद मुक्त को किसको गनी, जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कह कौन आवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कह गित ठाए, जब आपे आप अपनी जो तर तब गमन ने डर गमन का तो डरा, अपन जल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसन जन्म मरण कहो का विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो के सोए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त के सपूषत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, अपने आप आप ये चर्जा नानक आपन रूप आप ये परजा, जय निर्मल पुरख पुरख पा धोता तो बिल मैल कह हो क्या धोता, तो जय निरंजन निरंकार निर्भान तय गौन को मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीत छल चित्र लगत गौ कीस, जय जो स्वरूपी जो जय जो स्वरूपी जो संग स्वभाव है तय किसे भूक मंत्र बतावै, करण करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार, जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई, जय सर्व

अष्टपदी पूरे गुरकासुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतरिक उतरे चिंद आसन त्याग उतरंग संदना के तूर मन मंग आप छोट बेंती कर हो सा संग अगन सागर तरो हर तन के पर लिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग पाज परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण।

गाव सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेद।

तव ज्ञान खंड मह ज्ञान परिचंड तिथै नाद विनोद कोड़े आनंद सरमुखंड की बाणी रूप तिथे कहाड़त घड़ी है।

हथियार। पाओ खलागन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल घड़िए शब्द सटी टकसाल जिन कहो नदर करम तिन कार नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत

जात है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगाज है, अपाज है, अचूज है, अचाज है, अमीक है, रिपीक है, अतांध है, अबांध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है।

सर्वं भुक्ता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत व प्रसाद आदरूपे अनाद मुहूर्त जोन पुरखे अपार सर्वमान त्रिमान देव पेहवादि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व

काम है प्रजहंग प्रयासंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पास है चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी शांत न सतराय न मित्तराय न परमंग न पितराय न कर्मंग न काये जन्मंग अजाय न चित्तराय न मित्तराय परे है पवित्राय परथिसे अधिसे अधृसे अकृसे भगवती शांत वै प्रसाद कहते के अछेज देस है के अपेज पेस है के अगंज कर्म है के अपांज परम है के अपेज लोक कह के अदित शोक कह के अवतूत वर्ण के विपहूत कर्ण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण के जगतंग रीति है के शत्रंग क्षत्रिय

वह प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमेसल सलाम है समाहतल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी दिहाद है के राज कर हिंद है करीमल कमाल है के हुसन जमाल है गनी मुल खिराज है गरीम मुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकंग प्रनास है सुबह तोल निवास है अगंजल गनीम है रजय करहीम है।

तो विभूत है, के अमितो पसा है, के आतम प्रभा है, के अचलंग नाग है, के अमितो अपांग है, माद पार शांत व प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण दाम वर बरे गंज हर नर पर पांच अन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अन पवनास मन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल दाम अन सिंह अंग आसने अपंग उपमा अपार गत मेति उदार जल थल अमंड देश वे से अपंड जल थल महंत देश वे बेअंत अन भाव ना

है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कालखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है

को आस करिए पूर न होए हमारी आशा तोहर भजन की रह पे आशा तुम्हें छाड़ कोई अमर न त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं।

थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमार। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछने उपजायो।

विचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ कर पूर्ण सुभराता किल बिग सकल देह को हरता दुष्ट दुखण कौश करता श्री

संबद 17 सहपनी जय अर्ध सा सुफुण तीन कह जय भाद्रव सुदी अष्टमी रहुवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा।

जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन नमसाया। गुर प्रसादी हार मन वसया पूर्व लिखिया पाया। कह नानक कहो शरीर प्रवान हुआ। जिन सत गुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी। हर बिने वरना देखो कोई।

पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया।

पौड़ से किती संतोखी जिनी सचो सत्य हाया ओने मंदी पैर न रखन कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित दे वह चढ़े सवाया वड़े आई वटा पाया वड़े आई वटा।

0: जिन करते कारण किया जिन करते करना किया लिखिया आवन जान नानक मति मिथ्या
1: कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब।

0: सबको आखे पाए होए पुराना छुटिए पी फिर पाइए होल नानक तक न टूटे जे तक
1: भला भला लाई मुरलिया पत उपजय सा लाई सासू।

आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार एक नागली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिछिया आप कराए करे आप हों कैसे करी पुकार नान करना जिनकी या फिर तुझी करनी।

बांधियो गोर कियो बंधानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूर जुल बैठी साध संग जी वडभागी हो आप जी ने अमृत वेले तो ही गुरु पातशाह दरबार दी हाजरी भरिया हन अमृत वेले तो ही गुरु घर विखे जुड़ के संगति रूप जनाम जप के पवित्र गुरबाणी पढ़ सुन के कथा कीर्तन सरवण करके गुरु घर विखे सेवावां करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे सो गुरु साहिब जी कृपा करन आप आई समूह संगत की हाजिर दर प्रवान कर दर करो गुरसिख जी नाम दान बख्शन आप सब नूं धन धन छेवें पातशाह छठम पीर बैठा गुरु भारी अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे गुरता गुरगद्दी दी अज लख लख वधाइयां होण जी शाम दीवान संबंध विच ही सजणगे आप जी ने हाजरी भरनी आ अगले हफ्ते मंगलवार वाले दिन 16 जून नूं धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे शहीदी पुरब आ रहे हैं इस संबंध जवान सजनगे आप जी ने दवाना छा हाजिर करके इलाज प्राप्त कर रहे जी इतने अमृत विद्वान की संपूर्णता है आओ बच्चों के कैंप भी गुरमत कैंप लग रहे हैं रोजाना ही सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक आप जी बच्चों साथ हाजिर भर के बच्चों गुरमत राही जोड़ के इलाज प्राप्त करो इतने अमृत विद्वान की संपूर्णता है वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: एकंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच
1: सोचै सोच न हो भई जे सोची लखबार
0: चुपै चुप न होवी जे लाए रहा लिवतार
1: भुखिया भुख

0: चार
1: गावे को साज करे तनखे
0: गावे को जी ले फिर दे
1: गावे को जापै जिसे दूर
0: गावे को वेखे हाथ रह दूर
1: कथना खतीना आवे।

0: गुर
1: ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई
0: जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई
1: गुराय के दे बुझाई
0: सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई
1: कीर्तन आवा जे तिस पावा विन पाने के नाई करी
0: जेती सिरठ उपाय देखा विन कर्मा के मिले लई
1: मातवेश रतन जो आहर मान जे गुर की सिख सुनी
0: गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई
1: जेव जुग चारे आर जा होर सुनी होए
0: नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई
1: चंगा न और खाई।

0: आवे मन बुद्ध
1: मने सकल्प मन की शुद्ध
0: मने मोह छोटा न खाए
1: मने जम के साथ न जाए
0: ऐसा नाम निरंजन होए
1: जेको मन जाने मन कोए
0: मने मार्ग ठाक न पाए
1: मने पस्यो पर गज जाए
0: मने मग न चल पंथ
1: मने तन स्थिति संबंध
0: ऐसा

0: इस राखे से
1: आखे केते कीते बुद्ध
0: आखे दानव आखे देव
1: आखे सुर नर मन जन सेव
0: केते आखे आखन पाए
1: केते कह कह उठ उठ जाहे।

0: हारे
1: गावे चेत कुपात लग जाने लिख लिख तरम विचारे
0: गावे ईसर वर्मा देवी सोन सदा सवारे
1: गावे इंद्रन दासन बैठे देव त्यागर नाले
0: गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साद विचारे
1: गावन चति सती सदोखी गावे वीर करारे
0: गावन पंडित पढ़ने रखी सर जुग जुग वेदा नाले
1: गावे मोनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले
0: गावन रत्न उपाय तेरे अठसठ तीर्थ नाले
1: गावे जोत महाबल सूरा गावे खानी चारे
0: गावे खंड मंडल बर पंडा कर कर रखे तारे
1: सही तुनो गावे जोत उद्भावन रते तेरे भगत साले
0: और केते तुनो गाव से मैं चेतना वन नानक क्या विचारे
1: सोई सोई सदा सिप साहेब साचा साची नाई
0: है पी हो सी जाए न जाए
1: रंगी रंगी पाती कर कर
0: जिनसी माया जिन उपाय कर कर वेख्या कीता अपना ज्योतिष दी वड़ियाई
1: ज्योतिष पावे सोय कर सी हुक्म ना करना जाई
0: सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई
1: मुंदा संसोख सरम पचोली ध्यान की करे बबूत
0: किंथा काल कुवारी काया जोग डंडा प्रतीत
1: आई पंती सगल जमाती मन जीता जग जीत
0: आदेश है आदेश
1: आद नील नाद नाथ जुग जुग एको वेश
0: भुगत गया
1: भंडारण कर

0: बहुत अनूप
1: ताके
0: रूप न कथने जाहे
1: नाओ मरे न ठगे जाए
0: जिनके राम वसै मन माहे
1: ते भगत से के लो
0: रहे आनंद सचा मन सोए
1: चाच खंड वैसै निरंकार
0: कर कर वेखै नगर निहाल
1: ते खंड मंडल वर पांड
0: जेको कथै त अंत न अंत
1: तै लो लो आकार
0: जिव जिव हुकम तवै तिवकार
1: वेखै विकसै कर विचार
0: नानक कथना करड़ा सार
1: जत बहरा तीर सुनियार
0: अहरण मत वेद हथियार
1: बौखला अगन तपताओ
0: भांडा पा अमृत तटाल
1: सब सजी सुखसार।

0: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र पाणे
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते
1: नमो जोग जोगेश्वर परम जुग।

0: मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
1: नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता।

0: जोर जाचरी छंद जले है थले है अपीत है अपे है
1: प्रभु है जू है देश है अपे है
0: भुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे अनंदी अनंदी स्वरूपे
1: नमो सर्वमान्य समस्तीन गाने
0: नमस्त्वं निर्नाथे नमस्त्वं।

0: चरपट छंद त्वा प्रसाद अमृत कर मे अमृत धर्मे
1: अकल जोगे अचल भोगे
0: अचल राजे अटल साजे
1: अकल करमंग अकल करमंग
0: सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता।

0: और न पेश जाकर रूप रंग न रेख राग
1: दिशा
2: हो फैले और राग
0: नाम काम हीन पेखत ताम नहीं जाहे
2: सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानत
0: एक मूर्त अनेक दर्शन।

0: मन मन गण प्रणाम नरपै नरकाम
1: खंड
0: आलस्य कर्म आदृश्य धर्म चाचरी छंद तो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे जंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता
1: चतर चक्र
0: वर्ती चतर चक्र भक्ति।

0: राजं प्रवाह के तर्मं स्तुजा है
1: सुख बन के सर्वापन है
0: जगतं कृति है के छत्रं छत्रि है
1: ब्रह्मं स्वरूप है के अल्प अनुप है
0: आद अदेव है के आप अपेव है
1: के चित्र विहीन है के एक अधीन है
0: के रोजी रजा के रहीम रहा
1: के बाक गैब है के गैबुल गैब है
0: के अफवल गना है

0: एक है अटाहा है अगाह है
1: सब है अगम है नील है अनाद है
0: अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद प्रसाद सर्वंहंता सर्वंगंता
1: सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता
0: सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता
1: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं
1: सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
0: सावच्छंद त्वा प्रसाद नमो नारक नासे सदावं प्रकाशे
1: नग्नं स्वरूपे अपंगं विभूते
0: प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे
1: अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते
0: अनंगीय नामे त्रिपंगी त्रिकामे
1: निर्पंगी स्वरूपे अपंगी अनुपे
0: न पोत्र न पत्र न सत्र न मित्र
1: न ताते न माते न जाते न पाते
0: निरसाकं सरीख है के अमतो अमीक है
1: सदैवं प्रभा है जय है जा है
0: भगवंती छंद तो प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है
1: मेरसल सलाम है सलमसल कलाम है
0: के साहेब दिमाग है के हिसनल दराग है
1: कामर करी है के राजक रहीम है
0: के रोजी दहिंद है के राजक रहिंद है
1: करीमल कमाल है के हुस्नल जमाल है
0: गनीमल खिराज है गरीबल नवाज है
1: हरीफल सकन है।

0: परम
1: परम ईश है समस्तल अदीश
0: है
1: जमाने अमीकल इमा है
0: इमल कमाल है कि जोर तो जमाल है
1: सलंग प्रकाश है के अमित सुबास है
0: अजब स्वरूप है के अमित अभिभूत है
1: अमित उपसा है के आत्म प्रवाह है
0: के अचल अंग है के अमित अपांग है
1: मद पार छंद तव प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मदाम
0: मन
1: गण प्रणाम मन मन सलाम
0: नर अखंड पर नर अमंड
1: मन भव अनास मन मन प्रकाश
2: मन गण प्रणाम जल थल
1: मदाम अनछेज अंग आसन अपंग
0: उपमा अपार गत मित दार
1: जल थल अमंड दिस विस अपंड
0: जल थल महंत दिस विस व्यंत
1: मन भव अनास त्रित तर दरास
0: आज अनबाह कैसे दाह
1: ओंकार आद कथनी अनाद
0: खाल खंड ख्याल गुण प्रकार
1: कर प्रणाम चित चरण नाम
0: अनचंज गात अजज न बात
1: अनचंज गात अनरंज बात
0: अनटठ पंडार अनटठ पार
1: आडीठ धर्म अत टीठ कर्म
0: आने वरण अनंत दाता महंत
1: हर बोल मुना छंद तो प्रसाद करनालिया है अरकालिया है
0: खाल

0: आकर है विषम पर है
1: जगदेश्वर है जगदेश्वर है
0: ब्रह्मण ब्रह्मंडस है कलखंडस है
1: परते पर करुणा कर है
0: अजपा जप है अथपा।

0: देखियत प्राण पतीके
1: श्री भगवान की
2: पाए कृपा हो
3: एक रति बिन एक रति के
0: माते मतंग जरे चर संग
4: अनुपतांग सुरंग सवारे
5: कोट तरंग करंग से कूदत पौन के गौण को जात निवारे
6: पारी पुजान के पूप बली बद नियावत शीश न जात विचारे
7: ते पे तो कहां पे पूपत अंत को नागे ही पाए पधारे
8: जीत रे सब देश सान को वांजट टोल मृडंग नगारे
9: गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत की है राज हजारे
10: भूत विवेक भगवान के पूपत कौन गने नहीं जात विचारे
11: श्री पद श्री भगवान पर बिना अंत कौन।

0: है
1: श्री भगवान पजे मन
0: उपत एक रति बिन एक न लेख है
2: सुध स्वाद दुरंत दबा सुसाज सनात जान दलाएंगे
0: भारी गवान परे मन मैं कर पर्वत पंख

0: सर्वसंत श्रीपद अंत से जम पास करेंगे।
1: जे नर श्रीपद के प्रस है भगत नर देना दे धरेंगे।
0: कहां पे हो जो दो लोचन के बैठ रहे हो भक्तियान लगायो।
1: नात लिए नहात समुद्र लोग पर लोग गवायो।
0: वास के भक्तियान सो बैठ के ऐसी ऐसो बैस बतायो।
1: साच कहूं सुन ले हो सब जिन प्रेम की ओतन ही प्रभ पायो।
0: कहो ले पान पूछ तरे हो सिर कहो ले लिंग ले लटकायो।
1: Here I was.

0: poate.
1: आनंद साहेब राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
2: सतगुरु ता पाया सहज सती मन जिया वधाइयां।

0: सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मानव सावे
1: नाम जिंगे मानव सेवाजे सब कलेरे
0: कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा
1: सच्चा नाम मेरा आधार
0: साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया
1: प्रसाद सुख मनाए सेहा जे नीचा सब बुझाइया
0: सदा कुर्बान कीता गुरु विठो जिसकी आए वडियाइया
1: कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यार
0: साचा नाम मेरा आधार
1: वजे पंच सबत कर सभागे कर
0: कार सभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया
1: पंच दूत वास कीते का कंटक मारिया
0: तर कर्म पाया तो जिन को से नाम हर कह लागे
1: कह नानक कह सुख हुआ तित कर आनंद वाजे
0: साची लवे बिन देह नमानी
1: देह नमानी लेवे बाजो क्या करे विचारिया
0: सदबाज समर्थ कोय नाही कृपा कर बनवारिया
1: इस नो हो थाने सब लाग सवारिया
0: कह नानक लेवे

0: पवित्र माता पिता कुटाम सहत से पवित्र संगत सुबाइया
1: कह पवित्र सुंद पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया
0: कह नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर त्याया
1: हरमी सहसना उपजय सहसना जाए
0: नह जाए सहसा कित संजम रहे कर्म कमाए मन तो वह शब्द लाग हो हर स्यो रहो चितलाए
1: कह नाम गुरु प्रसाद जुप जय सहसा एव जाए
0: जियो मैले बाहर रहो निर्मल बाहर रहो।

0: विमुख हो वह उन सतगुर मुक्त न पाए।
1: आवे मुक्त न
0: अनेक जूनी भरम आवे वन सतगुर मुक्त न पाए।
1: मुक्त पाए ना जानी सतगुरु सब सुनाए।
0: कह नानक विचार देखो वन सतगुर मुक्त न पाए।
1: सतगुर के प्यारो गावो सच्ची बाणी।
0: बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी।
1: करम होवे हृदय तिना समाणी।
0: पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सार गुपाणी।
1: नानक सदा गावो एहो सच्ची बाणी।
0: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बज हो होर कच्ची।

साहिब का परवासा अपने सतगुर कह बलिहारे आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे रहा।

सगले दुख बिनासे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानको सी भी सच, सोचै सोच ना होवै जे सोची लखवार। छुपै चुप ना होवै जे लाए रहा लवतार, भुख्या भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। सह सियाणपां लख होवै तां इक ना चलै नाल, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई। हुक्मी होवन जिया हुक्म लै वड्याई, हुक्मी उत्तम नीचा हुक्म लिख दुख सुख पाई है। कना हुक्मी बगसीस है कि हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मे अंदर सब को बार हुक्म न कोय, नानक हुक्मे जे बुझै ता हुमे कहे ना कोय। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दत जाने निशान। गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तन खेह, गावे को जी लै फिर देह। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे आदरा हदूर। कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। दिन दादे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विकसे वे परवाहु। साचा साहब साच नाए भाख्या भाउ अपार। आखे मंगे दे दे दात करे दातार, फेर के अगे रखिए जद दिसे दरबार। महो के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। करमी आवे कपड़ा नदरी मुख दुआर, नानके वह जानिए सब आपे सचियार। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावी है गुणी निदान। गावी है सुनिए मन रखिए भाओ, दुख पर हर सुख घर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रिया सुमाई। गोरी सर गुर गोरख ब्रह्मा गुर, पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। गुराक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसरना जाई। तीर्थ नावा जे तिस भावा, विन भाणे के नाई करी जे तीसर ठेव पाई। वेखा विन करमा के मिले लई, मात विच रतन जवाहर मानक। जे एक गुर की सिख सुनी, गुराक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होरद सुनी होए, नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा ना उर खाए कहे जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे। तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोए करे, सुनया सिद्ध पी सुरनाथ। सुनया धर तवले आकाश, सुनया दीपलो पाताल। सुनया पोए न सके काल, नानक भगता सदा विगास। सुनया दुख पाप का नास, सुनया ईसर भर माइंद। सुनया मुख सुलाहन मंद, सुनया जोग जुगत तन भेद। सुनया सासत सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास। सुनै दुख भाव का नास, सुनै ससन तो ज्ञान। सुनै सरका सुनान, सुनै पढ़ पढ़ पावे मान। सुनै लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास। सुनै दुख भाव का नास, सुनै सरा गुणा के गाह। सुनै सिख पीर पात साह, सुनै अंधे पावे राह। सुनै हाथ वे सुगाह, नानक भगता सदा विगास। सुनया दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही ना जाए। जे को कहे पिछे पछताए, कागद कलम ना लिखण हार। मन्ने का बे करण विचार, ऐसा नाम निरंजन होए। जे को मन जाने मन कोए, मन्नाए सुरत वे मन बुद्ध। मन्नाए सगल भवन की सोध, मन्नाए मोह छोटा ना खाए। मन्नाए जम कहे साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए। जेको मन जाने मन कोए, मनाए मार्ग ठाक न पाए। मनाए पत स्यों प्रगट जाए, मनाए मग न चले पंथ। मनाए धर्म से तीसन बंध, ऐसा नाम निरंजन होए। जेको मन जाने मन कोए,
ਮੰਨੈ ਪਾਵੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੇ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੇ ਨਾ ਭੇਖੈ ਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰ ਗੈ ਮਾਨ, ਪੰਚ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰੇਕ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਦੇ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਮਣ ਜੋਰ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ, ਇਹੋ ਲਿਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਲਿਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ, ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਰ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆ।

निरंकार असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरम भक्सार असंख मुण लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख अलवड़ त्या कुमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फेराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक असर करे पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार संख नाव असंख था

अनाथ जुग जुगे को वेसा। एका माई जुगते आई तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान, जिव ते सुभावे तिवे चलावे, जिव हुवे फरमान।

ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक तमरीच ना कोय राति रुति तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सुन पंच परवार नदरी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन पाणी वै संतर केते काण महेस केते ब्रह्मे घाट घड़ी है रूप रंग के वेस केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देवदान मुन केते केते रतन समुंदा केतिया खाणी केतिया बाणी केते पा नरेंदा केतिया सुरती सेव केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कूड़े आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिदा की सोध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होरन कोई होर तिथे जोत महाबल सूर तिन मैं राम रहा भरपूर तिथे सीतो सीता मैं मामा हे ताके रूप न कथने जाहे नाहे मरे न ठाके जाहे जिनका राम वसे मन माहे तिथे भगत वसे के लो करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथे तांत नांत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार अरण मत वेद थियार भौ खलागण तपताओ भांडा भाओ अमृत तित ढाल कड़ी है शब्द सची टकसाल तिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक।

मुख कर संतन की धूरे को ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला मोतीता मंदरी उसरे रतनीता होए जुड़ाऊ कस्तूर कंगु अगन चंदन लीप आवे चाओ मत देख भूला विसरे तर चेतने आवे ना हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुरपूछ देखे आवरना ही था उरा धरती ता ही दे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाओ मोहनी मुख मणि सोहे करे रंग पसाओ मत देख भूला विसरे तर चेतने आवे।

विकार जब लग शब्द ना भेदीए क्यों सोह है गुरुद्वार नानक धन सुहागनी जनसे नाल प्यार श्री राग महला पहला सुनी देह डरावनी जा जियो विचों जाए भाए बुलंदी विजवी तू ना निकस्यो काए पंचे रुने दुख भरे बिनसे

पंच भूत सच भय रते जोत सची मन माहे। नानक औगुण विसरे गुर राखे पात ताहे श्री राग महला पहला। नानक बेड़ी सच की तरी

गुरमुख सच सो तार गुर बिन क्यों तरिए सुख होए ज्यों भावे त्यों राख तू मैं अवरना दूजा कोई राव आगै देखो डाओ जलै पाछे हरियो अंगूर जे ते उपजे तिस ते बिनसै घट घट सच भरपूर आपे मेल मिलावै साचे महल हदूर साए साए तुझ संभला कदे ना विसरियो ज्यों ज्यों साहेब मन वसे गुरमुखी अमृत पियो।

मन बैरागी कर वसे सच बैराता होए ज्ञान महारस भोग वह बहुड़ भूख ना होए नानक हो मन मार मिल भी फिर दुख ना होए श्री राग महला पहला यो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लोभान शब्द न भीजे सागता दुर्मत आवन जान साधु संग सतगुर जे मिलाए ता पाइय गुणी निधान मन रे होमे छुटे गुमान हर गुर सरवर

संत सभा मिल ज्ञान। नित अनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम। कूकर कूड कमाई है गुर निंदा पचाए पचान। पर मैं भूला दुख कणो जम मार करे खुलहान। मान मुख सुख ना पाइये गुरमुख सुख सुभान। इथे धंद बिठाइए सच लिखत प्रवान। हर सज्जन गुर सेवदा गुर करणी प्रधान। नानक नाम ना विसरे कर्म सच्चा निशान। श्री राग महला पहला। एक दिल प्यारा विसरे रोग वड्डा मन माहे। क्यों दरगे पात पाइये जा हर ना वसै मन माहे। गुर मिलाए सुख पाइये अगन मरे गुण माहे। मन रे ऐनस हर गुण सार। खिन

मन वसै हौ मैं तृष्णा मार रहाऊ। मन मोनक मन मानक निर्मूल है राम नाम पत पाए मिल सत संगत हर पाई है गुरमुख हर लिव लाए। आप गया सुख पाया मिल सल लय सलल समाए जिन हर हर जिन हर हर नाम न चेत्यो सो अवगण आवे जाए। जिस सतगुर पुरख न भेट्यो सो भवजल पजे पचाए इहो मानक जियो निर्मोल है कौडी इहो कौडी बदले जाए। जिन्ना सतगुर रास मिले से पूरे पुरख सुजान गुर मिल भवजल लंघी है दर गए पात परवान। नानक ते मुख उजले धोनी उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला। वणज करो वण जा रहो वखर लियो सुमाल तैसी वस्त वसाई है जैसी निबह नाल अगे साहो सुजान है लैसी वस्त सुमाल।

कनो नेत्रोय खोटे पुत ना पवै जिन हार गुर दर्शन होए खोटे जात न पत है खोट ना सी जस कोए खोटे खोट कुमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाइए गुर का।

तू सरवर तू हंसा कौल तू है कविया तू है आपे वेख विकास। श्री राग महला पहला कर तीजा यो तन धरती बीज कर्मा करो सलल पाव सारंग पानी मन किरसान हृदय जमाए लै क्यों पावस पद निर्वाणी काहे गर्भ समूढ़े माया पित सुत सगल काल त्रमाता तिरे हो है नांत सुखाया रहा विखे बेकार दुष्ट किरखा करे इन तज आत्मे हुए ते आई जब ता संयम हुए जब राख कमल बिगस मद असर माई बीस अवतारो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सर सारे दस अठार मैं परंपरो चीन दस अठार मैं परंपरो चीन कह नानक एव एक तार है। श्री राग महला पहला कर तीजा अमल कर धरती बीज सबदो कर सच की आब नित दे पानी होए किरसान ईमान जुमाय लै पिस्त दोचक मूड़े बजानी मत जान सोह सह गली पाया माल कै माने रूप की सोबायत विधि जन्म गवाया रहा ऐब तन चीकड़ो यह मन मीड को कमल की सार नहीं मूल पाई पौर उस्ताद नित भाख्या बोले क्यों बुझे जान है बुझाई आखण सुनना पौन की बाणी अमन रत्ता माया खसम की नदर दिलै पसंदे जिनी कार एक त्याया

खरा सियाणा बहुता पार हानक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर हौं क्या मोदेसा दुष्ट चोर नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार श्री राग महला पहला घर चौथा

कैसा होए आप पछाणे बुझै सोए गुर प्रसाद करे विचार सो ज्ञानी दरगह परवान। श्री राग महला पहला घर चौथा

गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाइए, जे लोचे सब खोए राव। लख चौरासी फिर पया कामन दूजे पाए, बिन गुर नींद न आवे दुखी रहन विहाए, बिन सबदे पिर ना पाइए बिरथा जन्म गवाए। हौ हौ करती जग फिरी ना धन संपे नाल, अंधी नाम न चित ईसा बादी जमकाल, सतगुरु मिलै धन पाया रना मर दे समाल। नाम रते से निर्मले गुर कै सहज सुपाए, मन तन राता रंग स्यों रसना रसन रसाए। नानक रंग न उतरे जो हार धोर छोड़िया लाए। श्री राग महला तीजा, गुरमुख कृपा करे भगत की जे, बिन गुर भगत ना होई आपै आम लाए, बूझे ता निर्मल होवे सोई। हर जियो साचा साची बाणी शब्द मिलावा होई,

आपे जग जीवन सुख दाता, आपे बख्श मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को आख सुनाए। गुरमुख आपे दे वडियाई, आपे सेव कराए, जे कुटाम बोल बाणा चल दिया नाल न जाई, सतगुर सेव गुण दान पाया ते दी कीम न पाई। हार प्रभ सखा मीत प्रा मेरा अंते होए सुखाई, अपने मन चेत कहे कहाए, बिन गुर आप न जाई, हर जियो दाता भगत वछल है, कर कृपा मन वसाई, नानक सोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान, सतगुर सेव सुख पाया, विचों गया गुमान, दर सेवन संत जन खड़े, पायन गुणी निधान, मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए, मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए, गुर का शब्द मन वसे, मन तन निर्मल होए राव, कर कृपा घर आया आपे मिले आया, ए गुर सबदी सलाहिए, रंगे सह सुभाए, सचा सच समाया, मिल रहे न विछड़ जाए, जो किछ करना सो कर रहा, वरना करना जाए, चिरी विछुने मिले अन, सतगुर पन्ने पाए, आपे कार कराए सी, अवर न करना जाए, मन तन रत्ता रंग स्यों, हो मैं तज विकार, ऐन सिहर दे रव रहे, निरपो नाम निरंकार, नानक आमलायन पूरे शब्द अपार। श्री राग महला तीजा, गोविंद गुनी निधान है, अंत ना पाया जाए, कथनी बदनी ना पाईए, हुमे विचों जाए, सतगुर मिले सत भय रचे, आप वसे मन आए, भाई रे गुरमुख बूजे कोए, बिन बूजे कर्म कमावने, जन्म पदार्थ खोए राव, जिन्नी चाखिया तिन्नी साधे पाया, बिन चाखे परम पुलाए, अमृत साचा नाम है, कहना कछु न जाए, पीवत हूं परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे दे ता पाइए, होर करना किछु न जाए, देवन वाले कहे हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जिहा कीतन तिहा हुआ, जेहे कर्म कमाए, जत सत संयम नाम है, बिन नावे निर्मल ना होए, पूरे भाग नाम मन वसे, शब्द मिलावा हुए, नानक सहजी रंग वरतदा, हर गुण पावे सोए। श्री राग महला तीजा, काया साधे उर्द तप करे, विचो हउमे ना जाए, अध्यात्म कर्म

सची सोए एक दिल प्यारा विसरै भगत कने ही होए मन तन शीतल साच स्यों सास ना बिरथा कोए मेरे मन हर का नाम त्याए साची भगत ता थिए जान हर वसे मन आए रह सहजे खेती राइए सच ना बीज पाए खेती जमी अगली मनुआ रजा सह सुभाए गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाए यो मन साचा सच रता सचे रिया समाए

सच सुनाए, हमें मेरा रह गया सच्ची लया मिलाई, तिनकू मैल हदूर है जो सच रहे लिव लाए। नदरी नाम त्याई वनकर्मा पाया ना जाए, पूरे भाग सतसंगत लय सतगुर भेटे जिसे आए, अंदर नामे रत्या दुख विख्या विचों जाए, नानक शब्द मिलाव रड़ा नामे नाम समाए, श्री राग महला तीजा अपना पाओ।

प्रभ पर ब्रह्म बक्सेंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी ते सासु मरे न आवे जाय ना विछोड़िया विछड़े सब मेरे असमाय दीन दर्द दुख पंजना सेव कै सत पाए चरज रूप नरंजनो गुर मेलाया माय भाई रे मीत करू प्रभ सोए।

साचू साहेब सीवीए गुरमा कथो काथ आवे जाय पुवाइए पाइए किरत कुमाए पूर्व लिखिया क्यों मिटिए लिखिया लीख रिजाए बिन हर नाम न सुटिए गुरमुत मैं मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जीव प्राण हों में ममता जल पड़ू लोभ जलू बिमान नानक शब्द विचारी है पाई है गुणी निदान श्री राग महला पंज पहला रे मन ऐसी हरसों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल बसाड़ी है पी विकसी स्नेह जल मैं जी उपाय कै बिन जल मरन मत्ता ने मन रे क्यों सुटे बिन प्यार गुरमुखे अंतर रब रहा बख्शी भगत भंडार रहाओ रे मने ऐसी हर सुप्रीत कर जैसी मसली नीर ज्यो अदक्यो त्यो सुकनो मन तन शांत शरीर बिन जल घड़ी न जीव ही प्रापा जाने पापीर रे मने ऐसी हर सुप्रीत कर जैसी चातरुक मेह सर पर तल हरियावले कबूमन पावे के करु मिली सुपाई है किरत पया सिर देह री मने ऐसी हर सू प्रीत कर जैसी जा।

कर कर जायसी जो आया जग माए जग सब जाका जड़ कोठड़ी तन मन दे सवा गो राखे से निर्मले सब दिन वारी पहाई नानक तरिए सच नाम सिर सा पातशाह मैं हर नाम न विसर हर नाम रतन वैसा मन मुख पहु जुड़ पाचमुए गुरमुख तरे अथा श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर बैसना नित चलने की थोक मुकाम ता पर जानिए जा रहे निश्चल लोग दुनिया के हस मुकामे कर सिद करनी खर्च बाद लाग रहो हर नाम में रहो जोगी तासन कर भाई मुल्ला भाई मुकाम पंड बखाने पोथे आसिद भाई देव सतान सोर सिद गण गंधर भूमण जन से पीर सलार दर कूच कूचा कर गए अवरे पे चलनहार सुल्तान खान मलू कुमरे गए कर कर कूच कड़ी मौत के चलना दिल समझ तो पै पहुँच सब दैमाए वखाणिए बिरलाता बुझे कोई दान वखाण बिनती जल तल मई रसोए अल्लाह अलग अगम कादर करनहार करीम सब दुनी आवण जावणी मुकाम एक रहीम मुकाम ते सुनो आखिए जिस सिस न होवी लेख सुमान तरती चल सी मुकाम ओई एक दिन रब चले निस सच चले तार कलक पलोई मुकाम ओई एक है नानका सच बगोई महले पहले सतारा अष्टपदिया

0: Gurul, Huar, Gurul, Huar, Gurul, Huar, Gurul, Huar, Gurul, Huar, Gurul.
1: सारे बोलो हम गुरु जोदड़ी मिन्नत करो मिन्नत मिन्नत
0: वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु
1: अखां बंद करके मन जोड़ के
0: गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु Huang Guru Huang Guru Huang Guru Guru Huang Guru Huang Guru Huang Guru Huang Guru Huang Guru Huang Guru Huang Guru Huang Guru Huang Guru Huang Guru Huang Guru Huang Guru Huang Guru Huang Guru
2: Guru, Huang.